0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
4: पूछ ही लो सर।
3: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
4: फरवरी सर।
5: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
6: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
3: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं, दिमाग भी जीतेगा।
0: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Feel good, lay back, and enjoy the biggest hits through the night on Leica Radio.

0: Heads.
1: Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
5: Hey, boy!
6: Coast Guard, we're stuck.
7: Okay, help's on its way.
8: Hold on, mate.
9: Shoes, tide, phone.
10: Back before dark, love. Okay.
11: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
12: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
13: Wake up to Kajal every weekday morning on Breakfast. Leica Radio.

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत।

0: Biker Radio.
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुंचे.
3: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
1: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: लीजिए, आशा भोसले की आवाज में था ये गाना, रविंद्र जैन के म्यूजिक पर सौदागर फिल्म से लिया था। और उससे पहले आपने गाना सुना प्यार में दिल पे मार दे गोली, महान फिल्म से गाना। और इस दोनों गीतों को सुनकर आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। ये है आप सभी का फेवरेट लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। और एक बार फिर से सभी का स्वागतम। एक मैसेज आया है, ये मैसेज भेजा है महालक्ष्मी जी ने। कहती है, ऋतु जो आपने गाना बजाया है ना, प्यार में दिल पे ढियाऊ मार दे गोली, ऐसी आवाज निकालते हैं ना हम गोली की मुंह से। तो आपने लिखा है कि इस गाने ने मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज ताजा कर दी है। और आप लिखती है कि जब मेरे भाई इस गाने को बजाते थे तो जब भी गन शॉट होता था वो म्यूजिक बहुत लाउड कर देते थे गोली की आवाज तेज से सुनने के लिए। और बाद में जब आपको पता चला तो आप भी यही सब करने लगी। अरे आपकी इस बात से मुझे भी अपनी बचपन याद आ गया कि जो भाई बहन होते हैं ना वो क्या क्या चीजें करते हैं। मतलब अब सोचती हूँ तो हंसी आती है कि सच में बच्चे मन के सच्चे, जो भी दिल में आता है वो करते हैं। और आपकी बात ने मुझे भी बहुत सारी मेमोरीज ताजा करा दी है। सो थैंक यू महालक्ष्मी हमारे साथ ये बात साझा करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं जिनके बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन पहले तो इसकी बात कर ले।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं, आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon Stores पर। ओनम संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 lbs सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Tokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kgs सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 piece से शुरू और Herdsman Butter Ghee 20 kgs still 10.99.
7: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
8: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039 63-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
13: Lester Miller is back.
14: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
13: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes, and a massive live performance.
14: Hosted by the team of Lyca Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
13: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
14: Arts Council England.
1: Miss your favourite show on Lyca Radio Midlands? You can now listen back at lycaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to lycaradio.com and the Lyca Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Lyca Radio Midlands when you want.
15: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time. Legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
16: Dil ne ye kaha hai dil se. Bole chudiya.
15: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
1: Lyca Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
17: Lyca Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LycaGold.com.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, ये थी अनुराधा पौडवाल की आवाज, म्यूजिक बाय शिव हरी, जो हमेशा ही यश चोपड़ा की फिल्मों में म्यूजिक देते हैं, लेकिन इस फिल्म में भी उनका म्यूजिक था। और ये फिल्म थी साहिबान, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर ने काम किया था। फिल्म ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन ये गाना मुझे अच्छा लगता है, सोचा आज क्यों ना इसे प्रोग्राम में बजाया जाए। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, इसलिए आपके मैसेजेस मैं टुकड़ों में पढ़ूंगी, थोड़े थोड़े करके पढ़ूंगी। तो आप ये ना समझिए कि ऋतु ने इस बार हमारा मैसेज नहीं पढ़ा तो आगे नहीं पढ़ेगी। बस आपको रेडियो सेट्स के पास रहना है, ताकि आप मिस ना कर दें और फिर मुझसे कहें कि ऋतु जी आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। मैं नहीं चाहती, रेडियो सेट्स के पास ही रहिए, वरना गाने भी मिस हो जाएंगे और आपका नाम भी और आपका मैसेज भी।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जी हाँ, बिल्कुल, आप लाइका रेडियो नेटवर्क ही सुन रहे हैं और जहाँ कहीं भी मेरी आवाज पहुँच रही है, सभी का स्वागत है आपके मनपसंद रेडियो पर, ऋतु शर्मा शो में।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: तो चलिए मैसेजेस की शुरुआत करते हैं विजय गुरुरी जी आपके मैसेज के साथ। और आपने आज बहुत ही अच्छी सी बात हमारे साथ शेयर की है कि जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा, और जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। बहुत ही खूबसूरत बात है और बिल्कुल सच भी है, इसलिए अपना व्यवहार हमेशा हर किसी के साथ अच्छा रखिए, लेकिन कभी कभी मूड थोड़ा अलग होता है तो व्यवहार भी बदल जाता है, बट कोशिश कीजिए कि अच्छा व्यवहार रखें। सो थैंक यू साथ देने के लिए, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मौसुमा जी को, आपका मैसेज मिला है। जयंतन मीना हमारे साथ है, भरत गंगाराम जी हमारे साथ है, दिनेश सोरी जी कहते हैं लीजिए आपके आने से पहले आज मैं आ गया, क्या बात है, धन्यवाद आपका। आज ये आपका शायद जिम नहीं है या स्विमिंग नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने आप को फिट रखते हैं, तो ये अच्छी बात है, कीप इट अप। माधी जी थैंक यू कहते हैं, पहले दो गाने सुनकर मजा आ गया, मुझे भी ये बात सुनकर मजा आ गया। जयपट मॉडर्न में हमारे साथ है, फरीदा जी हमारे साथ है, मोहम्मद अयूब चौहान जी हमारे साथ है, दिनेश पोपट जी, बियाना मैनिल सोनी जी, फारूक मोहम्मद जी, हंसा जी, अर्जुन जी, महेंद्र बजारिया, हमारे हरीश खत्री जी, सुरजीत जी, मिस शेख, एंड ऑफ कोर्स हमारे बॉबी जी, जिन्होंने मैसेज भिजवाया है और कहते हैं कि मुझे भी दो गाने जो शुरुआत में आपने बजाए मेरे फेवरेट है। और आपने ये भी बताया है कि रिसेंटली आपके डैड हॉस्पिटल से लौट कर आए हैं, जिनकी तबीयत कुछ खराब थी और अब वो रिकवर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा गीत उनके नाम किया जाए, वो प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो चलिए अगला गाना हमारे बॉबी जी के डैड के नाम पर जाता है और उन सभी के नाम पर जाता है जिन्हें दिलीप कुमार पसंद हैं, जिन्हें वैजयंती माला पसंद है, जिन्हें आशा भोसले पसंद है और जिनके फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी साहब है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जी हाँ, खूबसूरत गाना अपने जमाने का जो आज भी जब बजता है तो सबको थिरकने पर मजबूर कर देता है, और ये जादू है ओपी नैयर साहब के म्यूजिक का। नया दौर फिल्म से था ये गाना, जिसे आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क से।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम, ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
0: तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ और मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, और ये मैसेज भेजा है हमारे शबीर जी ने। कहते हैं, वंस अगेन इट्स लवली टू हियर योर मधुर आवाज एंड टू एंजॉय वंडरफुल म्यूजिक, और आप ब्रेन ट्री जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। ओह आई लव शॉपिंग, चाहे किसी भी चीज की शॉपिंग हो, मुझे शॉपिंग करने में इतना मजा आता है कि मैं दुख दर्द तकलीफ परेशानी सब कुछ भूल कर शॉपिंग में घुस जाती हूँ। ओह माई गॉड, आपने क्या याद दिला दिया। एनीवेज, ये कहूंगी हैप्पी शॉपिंग। और आपने चार लाइनें भी हमारे साथ शेयर की हैं, लिखा है, दिल टूटने की आवाज नहीं होती, हर किसी को मोहब्बत नसीब नहीं होती, जो मिलते हैं दूर हो जाते हैं, हर कहानी हमेशा कंप्लीट नहीं होती। बात तो सच है, काश हर कहानी कंप्लीट हो जाती। अभी मैंने मुसाफिर कैफे देखा था, मुझे अच्छा लगा और मुझे बेसब्री से इंतजार है कि उसका पार्ट टू कब आएगा, और सुनने में आ रहा है कि उसका पार्ट टू जल्दी आने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि चंदर और सुधा मिल जाए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा। एनीवेज, आगे बढ़ जाते हैं, अगला मैसेज पढ़ लेते हैं, और ये मैसेज भेजा है गिरीश जी ने, भारत से साथ दे रहे हैं। और हमारे राजेश जी कहते हैं कि मैं भी एक विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम में से हर एक पृथ्वी का हिस्सा है और पृथ्वी भी हमारा हिस्सा है। ये सोचना कि इसे संभालना किसे है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम जिस तरह से अपने घर को संभालते हैं, उस तरह से हमें अपने प्लैनेट को संभालना चाहिए, क्योंकि आप घर को संवारे न संवारे, लेकिन अगर आपने इस धरती को नहीं संवारा ना, तो ये हमारे लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा। ये जो हवा, ये जो पानी, ये सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है ना, ये इसी प्लैनेट की वजह से मिल रहा है। सोचने वाली बात है, बहुत गहरी और बहुत ही बड़ी बात आपने हमारे साथ शेयर की है राजेश जी। थैंक यू क्रोइनन से महेंद्र पटेल जी, तृप्ति जी, सलमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारी ज्योति जी हैं जो लेस्टर में प्रोग्राम सुन रही हैं, कहती हैं मैं लेस्टर शहर जा रही हूँ और यहाँ पर इस प्रोग्राम को बिल्कुल क्लियर लाउड सुन पा रही हूँ। क्या बात है लेस्टर वालों, स्वागत है आपका इस शो में। चलिए अगला गीत आप सभी के नाम पर करते हैं।
1: Like a radio. Across the Like a Radio network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो अगला गीत बजाने से पहले हमको याद दिला दे एक बार फिर से कि दुबई जाने की सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। अच्छी खासी डील्स चल रही हैं वहां पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: की नजर।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गाना डेडिकेट करते हैं मधु जी को, जो आज अपनी हैप्पी वाली 70th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। और ये मैसेज भेजा है ज्योति जी ने, कहती हैं, ज्योति कहती हैं कि हमारी मस्ती ग्रुप की फ्रेंड है और जगजीत सिंह की गजल वाला गीत उन्हें डेडिकेट कीजिए। तो मधु जी, हमारी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे।
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए।
3: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
1: तो 1 पाउंड आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 167 बांग्लादेशी टका।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: The gold rate is 103.57 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. This is Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: Kuch shaame calendar mein nahi, dil mein hamesha ke liye bas jati hai. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर था ये गाना। और देखिए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो दूरियां भी नजदीकियां बन जाती हैं। कहां कहां पर हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं ये आपके मैसेजेस बताते हैं। ओस्लो नॉर्वे से कल्पा हाथी जी आपका मैसेज मिला है और आप लिखती हैं, केम छो मजा माछो। ये तो मुझे पता है कि आप क्या पूछ रही हैं गुजराती में। और आप कहती हैं, आई लव योर प्रोग्राम। और जब आप प्रोग्राम सुन रही हैं तो आप बना रही हैं रस्सा ढोकला, रिंगड़ बटाटा शाक, और गुजराती हैं तो थेपला भी बनाएंगी। ओहो क्या बात है, तो मतलब अच्छा खासा लंच तैयार हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने बताया है कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी गाना आपको बहुत अच्छा लगा। कल आपकी मम्मी जी का हैप्पी बर्थडे था और आप चाहती हैं कि उनके लिए कोई अच्छा सा गाना लगा दिया जाए। तो चलिए, सारा प्रोग्राम में जो भी आपको गाने पसंद है सब अपनी मम्मी जी के नाम पर कर लीजिए। और आप हमारा शो दे सुन रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम है वीना बेन राजा। आपको हमारी ओर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड ऑफ कोर्स आपकी पूरी परिवार की ओर से। प्रीति बेल्जियम में हमारे साथ है, दूर से सुन रही हैं, क्या बात है। विजय गुडूरी जी, वैजंती माला का गाना चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। अजय जी, निर्मला जी और हमारे साथ है उषा मदान। शरद सुमन, आपका बहुत दिनों बाद मैसेज आया है, अच्छा लगा आपने मैसेज भेजा, थैंक यू साथ देने के लिए। उल्लास जी, जैस्मीन जी और हमारे दिव्या जी, बहुत सारे मैसेजेस है, पढ़ूंगी लेकिन फिलहाल ये तो बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो चलिए, इस आवर में मैं आपको जोड़ी नंबर वन सुनवाती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज जोड़ी नंबर वन में मैं आपके लिए दो गाने लाई हूँ SP बाला सुब्रमण्यम और लता जी की आवाजों में। सुनवाते हैं पहला गाना अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: ये है
1: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410.
7: South Hall Travel, at all protected.
5: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.

0: बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी 1981 में, और इस फिल्म के बाद रति अग्निहोत्री और कमल हसन बड़े स्टार्स बन गए थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक भी इस फिल्म के लिए काफी पसंद किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये फिल्म बनी थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, तो उन्होंने इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे बाला चंद्र जी, उनसे कहा था कि सुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम का एक्सेंट थोड़ा अलग है, इसलिए उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, एसपी बाला सुब्रमण्यम ही इस फिल्म के गीतों को गाएंगे, क्योंकि कमल हसन भी साउथ इंडिया से आते हैं, उनके लिए इनकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगी। और इस तरह से एसपी बाला सुब्रमण्यम आवाज़ बने कमल हसन की, और इस कॉम्बिनेशन ने कमाल किया। फिल्म के गाने एक के बाद एक हिट, और उसके बाद तो जब सलमान खान की एंट्री हुई फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनकी भी आवाज़ पहले एसपी बाला सुब्रमण्यम ही बने थे, और उनकी आवाज में गाए हुए गाने क्या हिट हुए थे।
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और जब सलमान खान की पहली फिल्म की बात हुई ही है, तो अगला गाना मैंने बिल्कुल उन्हीं की पहली फिल्म से लिया है जिसमें लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज है। एंड गिरीश जी, आपने भी एक बहुत सुंदर गाना हमें सजेस्ट किया है बजाने के लिए, लेकिन उस गाने की लंबाई थोड़ी ज्यादा है और आज मेरे पास समय जरा कम है, मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी सेट है, लेकिन आई प्रोमिस आपका गाना किसी दिन आने वाले शोज में जरूर आपको सुनवाऊंगी।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: क्या सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी मैंने प्यार किया। और आपको बता दें कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो चांदनी फिल्म ऑलरेडी थिएटर्स में थी, कयामत से कयामत तक फिल्म भी थिएटर्स में थी और लोगों को लग रहा था, खास तौर पर फिल्म के जो स्टार्स थे उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म ज़्यादा शायद ना चले क्योंकि ऑलरेडी दो सुपरहिट फिल्म्स थिएटर में हैं। लेकिन जब सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया रिलीज हुई तो उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सलमान खान भाग्यश्री की पहली ही फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। आप जानते हैं इस फिल्म में सलमान खान से ज्यादा भाग्यश्री को पसंद किया गया था और क्योंकि भाग्यश्री एक राज घराने से आती थी तो उनके फादर ने साफ साफ कह दिया था नो किसिंग सीन, नो वेस्टर्न क्लोथ्स, ओनली चूड़ीदार पहनना उन्हें अलाउ किया था। और इस फिल्म में पहली बार उन्होंने एक सीन में जीन्स और एक ड्रेस पहनी थी। लेकिन बावजूद इसके, इतनी सादगी के बावजूद भी फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और ये सब बताता है कि फिल्म में ग्लैमरस चीज, ताम झाम लोगों को पसंद नहीं। अगर एक अच्छी सी कहानी है, अच्छा म्यूजिक है तो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये थी हमारी आज की जोड़ी नंबर वन जिसके दो गाने हमने आपको सुनवाए और कुछ और गाने जो आपने सजेस्ट किए हैं मैंने नोट कर लिए हैं, जरूर बजाऊंगी आने वाले प्रोग्राम्स में।
1: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica Radio. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM. Leica Extra Podcast Update.
0: तो बता दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ चुका है पॉडकास्ट का और इस बार इसे होस्ट किया है खुश ने और इस बार का टाइटल है इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है
3: लाइका रेडियो।
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg G1099 Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
4: Leicester Miller is back
5: and the stage is about to explode. Confirmed artist
4: H Dhami. Bringing the hits, the energy and those proper live stage vibes.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.
1: लता जी की आवाज में खूबसूरत गाना और एक और गीत मुकेश जी और लता जी की आवाज में. थैंक यू रितेश जी, फारूक मोहम्मद जी, प्रीति जी, भारती जी, जैस्मीन, अलका जी, हंसा जी एंड ऑफ कोर्स हमारी शर्फ.

0: ब्यूटीफुल गाना एस डी बर्मन के म्यूजिक पर रफी साहब की आवाज में गैम्बलर फिल्म से लिया था, जिसमें गैम्बलर आई थिंक बने थे देवानंद, क्योंकि इस फिल्म के हीरो थे, लेकिन इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा भी थे और साथ में थी जाहिदा। उससे पहले आपने इस जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत सुना और लीजिए दो गीतों के साथ। ये प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है जो कि शुरू हो गया है, और इस आवर में मैं आपको थ्री वर्ड्स गेम के वर्ड्स भी बताती हूँ और सुनवाती हूँ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी। लेकिन जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। प्रीति कहती है मैं पैनकेक्स बना रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि भाई 12 बजे का समय है एंड आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग किचन में होंगे, या तो किचन में आप लंच बना रहे होंगे, या फिर बना हुआ लंच पेट में डाल रहे होंगे, या फिर कुछ भी कर रहे होंगे एंड आई एम श्योर आप किचन में होंगे, या फिर खा के गार्डन में आराम से मौसम का मजा ले रहे होंगे, क्योंकि आज भी मौसम अच्छा है, टेम्परेचर 31 डिग्रीज है, लेकिन अगर धूप नहीं है तो चलेगा, है ना। और लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि कैसा है ना कि ये रोज मतलब खाना बनाना पड़ता है। ऐसा अगर भगवान हमारे साथ करता कि हमको सिर्फ हफ महीने में 5-6 दिन खा लो या 8-10 दिन खा लो और बाकी के दिन कुछ भी करते रहो, खाने की ज़रूरत ना पड़े, अगर सिस्टम ऐसे होता तो कैसा रहता। सुबह बनाओ, शाम बनाओ, रात बनाओ, कहीं कहीं पर तो लोग ब्रेकफास्ट भी करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर तो फिर ब्रेकफास्ट भी बनता है, फिर लंच भी बनता है, फिर डिनर भी बनता है, दिन भर खाना खाना खाना। एक बार ब्रेकफास्ट का काम खत्म हुआ, देन सोचने में लग जाओ अब लंच में क्या बनना है, फिर डिनर में क्या बनना है, ये लगता है लाइफ में खाने के अलावा कुछ और है ही नहीं। आपको बताऊं, जब मैं 2 साल पहले इंडिया गई थी तो मैं वहाँ पे जंगल गई थी घूमने के लिए, है ना, नेशनल पार्क, तो वहाँ पर एक टाइगर था, सो रहा था नदी के किनारे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये ऐसे सो रहा है, कब उठेगा? कहता है अब ये तो उठेगा नहीं, ये 3-4 दिन तक ऐसे ही लेटा रहेगा। हमने कहा क्यों? कहता है ये टाइगर या जो लायन है उनकी खासियत होती है, जब वो शिकार करते हैं ना, तो जो शिकार होता है उसे वो खूब पेट भर के खा लेते हैं, और क्योंकि कच्चा मांस होता है हजम करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए एक बार शिकार करने के बाद शेर 4-5 दिन तक कुछ नहीं खाता, बस उसको डाइजेस्ट करने के लिए आराम करता है और थोड़ा बहुत चलता है। उस समय मुझे ख्याल आया, काश हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा होता, अगर होता तो कितना अच्छा होता, सोचिए, है ना। एनीवेज चलिए आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको 3 वर्ड्स बता देती हूँ, क्योंकि शुरू कर रहे हैं आज के हम 3 वर्ड्स गेम का सिलसिला। तो ये 3 वर्ड्स बॉलीवुड के किसी एक गाने से मैंने लिए हैं और आपको इन 3 वर्ड्स की मदद से गाना पहचानना है। तैयार हैं आप? ठीक है, तो फिर मैं भी तैयार हूँ। पहला वर्ड है जन्मों, दूसरा है सपनों और तीसरा है होठों। यस, ये 3 वर्ड्स हैं। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, 1982 की फिल्म है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। सोचिए और हमें बताइए कि ये गाना कौन सा है। पहला वर्ड है जन्मों, दूसरा है सपनों और तीसरा वर्ड है होठों। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, 1982 की फिल्म और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक। जरा बताइए तो सही कौन सा है ये गाना, हमारे इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवा कर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए हमेशा की तरह ही ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI branch online और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और अब समय आ गया है कि आपको सुनवाया जाए आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत, और इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं विश्वजीत।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range, sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 LBS, sirf £13.49. Suhana Khaman Tokla 500 grams, sirf £1.99 each. Ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg, sirf £29.96. S. Motiram Namkeen ab sirf 99 piece se shuru. Aur Herdsman Butter Ghee 20 KG sir 10.99.
5: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN. Start.

आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमने आपको सुनवाया, क्योंकि इस बार के हमारे आर्टिस्ट हैं विश्वजीत, और ये उन्हीं की फिल्म थी जिसमें उनके साथ नैना साहू ने काम किया था और शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। और थ्री वर्ड्स गेम चल रहा है। आज का गाना बड़ा ही आसान है, लेकिन कमाल है आंसर बहुत कम लोगों ने दिया है। ठीक है, जिन्होंने दिया है उन सबका आंसर बता दूं, बिल्कुल सही है। Like a radio. तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको पहला गाना। Feel good track brought to you by Dairy Valley. Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या खूबसूरत गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और उस पर मुकेश जी की आवाज और शंकर जयकिशन का म्यूजिक। फिल्म थी तीसरी कसम और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। इस फिल्म में राज कपूर ने तीन कसमें खाई थी। आपको याद है वो तीन कसमें क्या थी? आखिरी कसम जो तीसरी कसम थी वो आई एम श्योर वहीदा रहमान से रिलेटेड थी, लेकिन वो क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक सैटरडे जब मैं शो पे लौटू तो आप मुझे बताइए कि इस फिल्म की तीनों कसमें क्या थी। देखते हैं आपने कितने ध्यान से इस फिल्म को देखा है, क्योंकि ये एक राज कपूर की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वहीदा रहमान ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था और फिल्म तो काफी पसंद की ही गई थी। और ये गाना भी आप सबको पसंद आया है, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। अब समय आता है दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक को सुनवाने का, लेकिन उससे पहले
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप देख सकते हैं द स्टेज स्पेक्टिकल दिवाली स्टोरी एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 27th September। टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं diwalistory.com पर। और इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: किशोर कुमार और वैजयंती माला की फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें एक बार फिर से शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि भाई द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति भी लंदन आ रही हैं परफॉर्म करने के लिए एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर। अपने टिकट्स आप बुक कर सकते हैं बाय सनातन एवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल, और टिकट्स जो हैं या फिर आप वेन्यू बॉक्स ऑफिस से भी खरीद सकते हैं। और इस प्रोग्राम के भी एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: और हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो फिर से याद दिला दें कि साउथ ऑल ट्रैवल को कॉल कीजिए फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए 0208-574-8410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और अब बता दें आपको कि जिन्होंने सही सही जवाब दिया है हमारे आज के थ्री वर्स गेम का, तो उनमें पहला नाम है उल्लास आपका, हाजरा जी, दिव्या जी हैरो से, गिरीश जी, विजय गुडोरी जी, तोची पनेसर एंड कुकी जी। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और जब आपने सही जवाब दे ही दिया है तो बस देर किस बात की, सुनवाती हूँ आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: This is Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: एक और खूबसूरत गाना जो था हमारे आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना, जिसे लिया था फिल्म इंसान से। इस बार फिर से इसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक था और इसे आप सबने एंजॉय किया है और सबने सही पहचान भी लिया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। ये है
2: लाइका रेडियो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So, आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए and 167 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So Gold Rate is 103.57 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: तो लीजिए, अब जाने की बेला आ गई है और अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार गोल्ड में आपका साथ देंगे अनुराग। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगे जय आपके साथ और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आनंदी आपके साथ। लेकिन मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर से मिलूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीक तक के लिए आप सभी से कहती हूँ बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
2: ये है
1: लाइका रेडियो।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: ये है
1: लाइका रेडियो। This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Nena, hum log waqt par pahunche.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
9: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
10: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
9: So where do we find something like that now?
10: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
11: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
12: K क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
13: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
14: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
13: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
15: आई हैव बीन से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
16: Back and it's bigger.
17: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers,
16: on Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
17: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580, or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
16: Exclusive charity partner Go Dharmic.
18: Plus, become Star Plus soon.
19: Naam Hamza Ali Mazari. Tumhara uddeshya sirf Pakistan mein ghusna nahi hai.
20: Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lepfi.
21: Anandi Shah with Weekend Bliss on Leica Radio.
22: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio. Leica Extra Podcast Update.
1: That's right, we've got a great podcast lined up for you. Is astrology real or a trap? We'll unpack the role of numerology and how numbers can influence personality traits, behavior, and life patterns. This episode will challenge beliefs, spark curiosity, and encourage all of you to think about the balance between fate and free will. So if you want to give this a watch, and you know what, I think you do want to, Leica Extra Podcast is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms. This will be hosted by the amazing Kush. I can't wait to see this. This sounds absolutely intriguing. You have to get this.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Weekend Bliss with Anandi Shah. Leica
2: Radio. Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
3: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Leicester Miller is back.
6: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
5: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes, and a massive live performance.
6: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
6: Arts Council England.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
8: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
9: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203773633 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा

0: Mamster ਗੋਲਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई
3: पवन जी मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
5: भाई निकाल माइक
6: भाई माइक के प्यार कितना सुंदर
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी पवाल मंडे टू संडे एट 10 पीएम ऑन कलर्स टीवी
7: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
8: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
9: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner.
7: This week's Think, number one on the Leica Chart Show. Tune in every Friday with Annika at 6 p.m. on Leica Radio, Greater London.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, बहुत प्यारे गीत थे। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म दामिनी, जो 1993 में आई थी, एंड इस फिल्म की हीरोइन थी मीनाक्षी सेशोद्री। बहुत प्यारी फिल्म थी, वेरी सीरियस फिल्म थी और बड़ी मीनिंगफुल फिल्म थी जिससे लेसन भी मिलता है। एंड इसमें काम किया था ऋषि कपूर ने, साथ में थे सनी देओल, एंड आमिर खान का भी रोल था इसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैंने देख, मुझे लगता है कि आमिर खान भी थे इस फिल्म में। अगर आपको भी लगता है आमिर खान थे तो मुझे बता दीजिए। राजकुमार संतोषी जी ने इसे डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था किसने, नदीम श्रवण का था संगीत। गीत आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम जी की आवाज़ों में, और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म चांदनी। चांदनी यश चोपड़ा जी की फिल्म थी, एंड ये फिल्म आई थी 1989 में, एंड इस फिल्म में थे श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान। बहुत प्यारा संगीत तैयार किया था शिव हरी जी ने, और शिव कुमार चौरासिया एंड हरि प्रसाद जी दोनों ने मिलकर इस फिल्म का संगीत दिया था। शिव कुमार शर्मा एंड हरि प्रसाद चौरासिया दोनों का नाम मिक्स करके, सो बहुत प्यारा संगीत था। उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए। अब प्रोग्राम में कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है आप बताइएगा मुझे। थोड़ा सा मुश्किल काम है आज, लेकिन शायद आपको तीसरा गीत सुनेंगे तो पता चल जाए कि क्या चल रहा है आज के प्रोग्राम में। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना आपसे पहले जान लूं कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक तो है ना। जहां भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूं और करती रहूंगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू गुड तो जल्दी से भाई कम ऑन ठीक हो जाइएगा, और अगर आप कुछ डाउन फील कर रहे हैं आज तो कम ऑन चीयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जियो शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए, मेरे वो साथी जो ऑलरेडी मेरे साथ साथ हैं। यस, मेरे आते ही स्टूडियो में आप भी पहुंच गए हैं, तो धन्यवाद, शुक्रिया, नवाजिश, इसी तरह से साथ देते रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी SBI UK वालों के जरिए अगर आप कहीं भी इंडिया पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो इन द ब्रांच, ऑनलाइन कर सकते हैं। SBI योनो मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और आज आपको आपका 1 British sterling pound दिला सकता है 128 rupees.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
2: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू। और or Herdsman Butter Ghee 20 kg still $10.99.
6: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.

0: 1962 में आई थी ये फिल्म, जिसका नाम था आरती। बहुत खूबसूरत फिल्म जिसे प्रेम फानी मजुमदार जी ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म में काम किया था अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार एंड शशि कला ने। संगीत रोशन जी का, जबरदस्त संगीत। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। अगर अभी भी नहीं पता चला है तो क्या मैं बताऊं, या एक गाना और सुन लीजिए, फिर शायद आपको पता चल जाए। बता दूं कि ये गाना आप तक पहुंचाया था किसने?
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Leica Radio.
0: और भाई, अब अगला गीत जो है वो मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म शर्मीली। किशोर दा की आवाज़ में गाया हुआ बहुत ही पॉपुलर गाना है, बहुत दफ़ा आपने सुना है, और जब भी सुना है आपने इसके साथ साथ गुनगुनाया है, तो आज भी शुरू हो जाइए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: गीत आपने सुन लिया, अभी भी नहीं पहचाना है, किसी ने भी अभी तक सही जवाब नहीं दिया है, किसी ने कहा ऋषि कपूर कॉमन नहीं, पहले दो गीतों में ऋषि कपूर ज़रूर थे, लेकिन मैं आपको फिल्मों के नाम बता देती हूँ, शायद इससे आपको पता चल जाए। पहला गीत था फिल्म दामिनी से, दूसरा चांदनी से, तीसरा आरती से, चौथा गीत चुना था मैंने शर्मीली फिल्म से। और अब अगला गीत आ रहा है रज़िया सुल्तान से। सो बताइए कि क्या कॉमन, क्या चल रहा है प्रोग्राम में? कॉमन कुछ नहीं है, पर इफ़ यू से यस, कॉमन भी है कि एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोई वर्ड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, ये भी बता दूं। कोई लिरिसिस्ट नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, लेकिन कुछ तो है। क्या चल रहा है बताइएगा मुझे।
2: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: सुमीला मुंगरजी, एंड आप कौन हैं? आपका नाम कहीं नहीं लिखा है. आप हैं मुशी. आपका जवाब भी ठीक है. और अभी बस दो ही नाम आए हैं जिन्होंने ठीक ठीक जवाब दिया है. ओके. एंड सपना फ्रॉम ऑक्सब्रिज, आपका भी जवाब सही है. एंड दैट्स इट. अब इतने ही सही जवाब मिले. अगर फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या चल रहा है प्रोग्राम में. सारे गीत मैंने कैसी फिल्मों से चुने हैं, कुछ पता चला? बताइए.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.
2: ये है
1: Leica Radio.
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: विजय गुजराई जी, थैंक यू सो मच. आपने भी मैसेज लिखा है. सरिता जी, बॉबी वॉज द फर्स्ट फिल्म आई वॉच विद माई देन गर्ल फ्रेंड इन 1973 एंड नाउ माई वाइफ फॉर नियरली 51 years. मेमोरीज. वाओ, यही तो है. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कौन सी यादें जुड़ी हैं आपकी इन गीतों के साथ, मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.37, Pakistani rupees 374.59, Sri Lankan rupee 452.31, Bangladeshi taka 166.99, Afghanis 88.59, Kenyan shillings 173.81 and US dollars 1.34.
2: Like
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: भाई, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 103 pounds and 57 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app. Leica Radio.
0: जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए आप सुन रहे हैं लंदन में, मैनचेस्टर में एंड मिडलैंड्स में, जिस भी जरिए को आपने चुना है. उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है. मोहम्मद अयूब चौहान साहब, आपने कहा है यास्मीन का गाना सुना दें तो मुझे अच्छा लगेगा. आई डेफिनेटली ट्राई. हंसा वोरा जी, थैंक यू आपका भी. और बहुत सारे मैसेजेस हैं जिन्होंने भी ठीक जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह से बड़े ध्यान से सुना करें प्रोग्राम. और प्रोग्राम के अगले आवर में हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं सावन कुमार टक जी को, जो कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे. उनका जन्म 9 अगस्त 1936 में हुआ था. आज उनकी जन्म तिथि पर उन्हें हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई. साजन बिना सुहागन, सौतन, सौतन की बेटी, सनम बेवफा, बहुत सारे एक्टर्स के साथ, अच्छे अच्छे नामी कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया. और अब प्रोग्राम का अगला गीत हमें न्यूज़ तक पहुंचाएगा. और अगला गीत कहाँ, किस फिल्म से है, सुनिएगा.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital, Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुंचे.
5: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
6: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
5: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
6: Imran Hashmi is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
5: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
6: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
7: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं.

0: इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
2: टेस्टी swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
3: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
2: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
4: Leicester Mela is back.
5: And the stage is about to explode.

0: What a beautiful song, very meaningful song. बिल्कुल यही जिंदगी की सच्चाई है. ये गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म सौतन, 1983 की फिल्म थी एंड पहला गीत था इस आवर का सनम बेवफा फिल्म से, 1991 में आई थी ये फिल्म. सावन कुमार टक इनके नाम से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रहे हैं. 9th August 1936 में इनका जन्म हुआ और 25 August 2022 में इनका देहांत हुआ. और इनकी डेथ से अबाउट फोर और फाइव मंथ्स पहले मैंने इन्हें यूट्यूब पर इंटरव्यू किया था एंड बहुत सारी बातें हुई. अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, सरिता सबरवाल, एंड उस पर इनका इंटरव्यू है. एंड उससे पहले भी 2-3 दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, लवली पर्सन, और घर में भी था इनका आना जाना. बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं इन्होंने और उन्हीं में से ये फिल्म थी सौतन. सौतन क्या बताऊँ, सौतन बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड सावन कुमार टक जी ने इसे डायरेक्ट किया था. राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरी, प्रेम चोपड़ा एंड प्राण जी ने इस फिल्म में काम किया था एंड रिटन बाय कमलेश्वर एंड म्यूजिक था उषा खन्ना जी का. इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है. वो गीत मैंने सोचा कि बहुत सुनते हैं आप, तो क्यों ना मैं आज के प्रोग्राम में इस गीत को जगह दूं. एंड इसी दौरान मुझे मैसेज लिखा है विजय गुदरोई जी ने और लिखते हैं, सरिता जी, डिड यू नो दैट सौतन वॉज फिल्म्ड इन माई पैराडाइज आईलैंड ऑफ मॉरिशस एंड द हाउस पिक्चराइज इन द सॉन्ग बिलोंग्स टू अ फ्रेंड ऑफ आर्स. यही तो यादें जुड़ी होती हैं इन गीतों के साथ, इन फिल्मों के साथ. तो कोई भी याद हो आपकी तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं. और सौतन की बेटी सनम बेवफा, बेवफा से वफाई, साजन बीना सुहागन, ऐसे बहुत से नाम हैं जो फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की. लेकिन इन्होंने सबसे पहले कौन सी फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी, जस्ट प्रोड्यूस की थी, क्या आपको पता है? उस फिल्म का नाम पता है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं. लिखिए, अभी लिखिए, मुझे बता दें कि कौन सी फिल्म थी जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी सबसे पहले, लेकिन उसे डायरेक्ट नहीं किया था, उसके बाद ये डायरेक्शन में आए थे. कौन सी फिल्म थी, जरा जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े चलाइए ना.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भाई, अगर आप इंडिया में कहीं भी पैसे भेजना चाहते हैं तो यू कैन एक्सचेंज मनी इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं. TNC अप्लाइज और आज आपके 1 British sterling पाउंड के बदले आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, 128 रुपीस. डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Banana function lakha hua hai.
4: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
8: Also explore 2026 cruises.
7: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.

0: फिल्म का नाम था साजन बिना सुहागन, 1978 की फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म। और इनकी फिल्मों के जो फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस या डायरेक्ट की उन सब के गीत मोस्टली इन्होंने ही लिखे और उनका संगीत उषा खन्ना जी का था। इनकी शादी बेशक कितने साल ना रही हो, अलग अलग रहे, लेकिन फिर भी उषा जी ने ही इनकी फिल्मों का संगीत तैयार किया जब ये अलग भी हो गए। अब बता दें कि इस फिल्म का जो गीत आपने सुना साजन बिना सुहागन का, वो गीत भी बहुत खूबसूरत था। यशुदास जी ने गाया एंड उषा जी ने इसको कंपोज किया और आप तक किसने पहुंचाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राइट वे, मैंने पूछा था आपसे कि कौन सी फिल्म थी जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी लेकिन डायरेक्ट नहीं की थी, कौन सी फिल्म थी जिससे इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो मेरे जिन साथियों ने सही सही जवाब दिए हैं उनमें से सबसे पहला नाम मैं लेने जा रही हूँ। हरवंश जी, आपका बिल्कुल ठीक बताया आपने। भारती जी, आपने कहा बड़े इमोशनल गाना है, बहुत अच्छा लगा। शौकत, थैंक यू सो मच, आपने कहा हवस का गीत सुनवा दे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। वो गीत हाल ही में हमारे यहाँ से सुनाई दिया है इसलिए मैं शायद नहीं शामिल कर पाऊंगी, लेकिन जो भी गीत मैंने चुने हैं आपको पसंद आएंगे ज़रूर। एंड आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, कौन हैं आप, लिखते हैं मूवी वॉज प्रोड्यूस एंड दैट वॉज नॉनिहाल। यस, आपका नाम नहीं है तो ज़रा देखें कहाँ है, निक्स, निक्स आपका निक नेम होगा शायद। उल्लास जी, आपका भी जवाब बिल्कुल ठीक है और जिन्होंने भी ठीक जवाब दिया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से साथ मेरा देते रहिए। आइए अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। यस, फिल्म का नाम नॉनिहाल ही, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। क्या आप जानते हैं कि संजीव कुमार को हरी भाई जरीवाला से संजीव कुमार का नाम किसने दिया था? सावन कुमार टकजी ने। जी हाँ, इस गीत के लिए, इस फिल्म के लिए इन्हें प्रेसिडेंशियल मेंशन नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म रिसीव द प्रेसिडेंशियल मेंशन द नेशनल अवार्ड।

0: वैसे इस फिल्म का दूसरा गीत भी मुझे बहुत पसंद है, मेरी आवाज़ सुनो। बहुत खूबसूरत फिल्म है और बहुत खूबसूरत गाने, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू एवर सो मच आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। अब सरिता ज़रा आपको याद दिला दे कि वॉच द स्टेज स्पेक्टेकुलर दिवाली स्टोरी एट ओव अरीना वेम्बले में ऑन संडे 27 सितंबर। टिकट्स फ्रॉम दिवाली स्टोरी डॉट कॉम। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो नेटवर्क। और इसके साथ ये भी याद दिला दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागसन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
1: Laika Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Laika Radio.
0: एक और बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसे लिखा सावन कुमार ठकची ने, लता जी की आवाज में गाए हुए ये गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म सौतन की बेटी। इंजॉय कीजिएगा और आप मैसेजेस इसी तरह पहुंचाते रहिएगा।

0: सौतन की बेटी, ये था फिल्म का नाम। बहुत प्यारी फिल्म थी जिसमें काम किया था जितेंद्र, रेखा, जयप्रदा ने। इस फिल्म का संगीत वेद पाल जी का था एंड सावन कुमार टकची ने डायरेक्ट किया था इससे एंड स्क्रीन प्ले भी इन्हीं का था एंड स्टोरी बाय सावन कुमार टक एज वेल एंड प्रोड्यूस बाय सावन कुमार। राइट, आपको बता दें कि एपिसोड 28 इज नाउ आउट। इज एस्ट्रोलॉजी रियल और अ ट्रैप, व्हाट डू यू थिंक? और बहुत सी बातें आप जान पाएंगे अगर आप ये वाला एपिसोड देखेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बता दें, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.
2: ये है
3: लाइका रेडियो।
2: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
5: Live on Sunday, the 1st of November. Nimura, Nimura, Nimura. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
6: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: सबक से चुना था इस गीत को। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस नहीं किया था सावन कुमार जी ने, लेकिन इस गीत को लिखा था उन्हीं की कलम ने। उम्मीद करती हूँ पसंद आया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.23, Pakistani rupees 374.19, Sri Lankan rupees 451.83 and Bangladeshi taka 166.80, US dollars 1.34.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LAIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's £103.57 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
0: वेल भी अगला गीत साजन की सहेली फिल्म से मैंने चुना है। 1981 की फिल्म थी, सावन कुमार टकची ने ही बनाया था इस फिल्म को भी। गीत काफ़ी लंबा है इसलिए पूरा का पूरा नहीं सुन पाएंगे, पर दैट सॉन्ग विल टेक अस टू न्यूज 6 बजे की समाचार। समाचारों के उस पर कुछ ऐसी फिल्मों के गीत सुनेंगे जो आज ही के दिन रिलीज हुई, कौन से साल में वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी।
3: हेलो देयर, माय नेम इज दीप राजा एंड आई डू द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो फ्रॉम 7 AM सैटरडेज एंड संडेज लाइक अ गोल्ड इन लंदन, द मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर।
1: Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
6: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg Sir 1099.
7: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
8: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turns

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों ही गीत जबरदस्त थे, और चुनना इन दोनों फिल्मों में से एक एक गाना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दोनों फिल्मों के गीत बहुत ज़बरदस्त हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी पसंद के ये दोनों गाने आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतरे। राइट, पहला गीत मैंने फिल्म खामोशी से चुना था। खामोशी आज ही के दिन रिलीज हुई थी, 9th of August in 1996। ये लीला बंसाली की, संजय लीला बंसाली की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी, डेब्यू थी, एंड इट स्टार्ड मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर, सलमान खान एंड सीमा बिश्वास इन प्रोमिनेंट रोल्स। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एनी, जिसका रोल किया था मनीषा कोइराला ने, अ यंग वुमन हु इज़ द ओनली हेयरिंग एंड स्पीकिंग मेम्बर ऑफ द डेफ mute couple living in Goa, and the film explores her deep bond with her parents, her love for music and her romance with Raj. Aur Raj ka role play kiya tha kisne, Salman Khan ne. Film ka sangeet diya tha Jatin Lalit ne and Remo Fernandez ne, and the lyrics Majru Sultanpuri saab ke the, and Aaj Main Upar aur Baahon Ke Darmiyan became really massive chart busters. Aur despite ki box office par shuru mein ye film itna acha business nahi kar paye jab ye release hui on 9th of August in 1996, lekin baad mein sabhi critics ne bhi and janta ne bhi, logon ने भी यही कहा कि ये संजय लीला बंसाली का बेस्ट काम था और ऑनेस्ट काम था, एंड बेस्ट एक्ट्रेस इसमें रही मनीषा कोइराला। स्क्रीन अवार्ड्स में उन्हें भी अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म के लिए क्रिटिक्स अवार्ड संजय लीला बंसाली को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति फॉर आज मैं ऊपर, देन बेस्ट आर्ट डायरेक्शन नितिन चंद्रकांत देसाई, एंड बेस्ट साउंड डिजाइन जितेंद्र चौधरी। इसके अलावा बहुत सारी नॉमिनेशंस भी हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसके बारे में जानते हैं। अब दूसरा गीत मैंने चुना था फिल्म सागर से, अनदर ब्यूटीफुल फिल्म, रमेश सिप्पी साहब ने बनाई थी, जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी ये स्टोरी, एंड प्रोड्यूस्ड बाय जी पी सिप्पी। इस फिल्म में ऋषि कपूर थे, कमल हसन थे, डिम्बल कबाड़िया, नादिरा एंड साईद जाफरी, एंड दैट वॉज आफ्टर बॉबी, दैट वॉज लाइक डिम्पल कपाड़िया की कम बैक फिल्म थी, एंड आर डी बर्मन साहब का संगीत था। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। ये फिल्म भी 9th ऑफ अगस्त 1985 में रिलीज हुई थी, यानी कि आज ही के दिन। आपको कोई फिल्म याद है जो आज ही के दिन रिलीज हुई और आपने आज ही के दिन देखी थी, इन किसी भी साल जिस साल वो रिलीज हुई, अगर हाँ तो मुझे बता दीजिएगा। अब जिन्होंने अभी अभी सुनना शुरू किया है तो भाई मिस कर दिया ना दो घंटे का प्रोग्राम, तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ मैं वीकेंड में ही आपके पास आती हूँ, तो 4 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम जो है ना वो अलार्म लगा के रख लें, और सैटरडे एंड संडे मेरा ही साथ दिया करें। एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मुझे मिला गुल की तरफ से, टूटिंग से, उन्होंने अपनी फ़ोटो वो कहते हैं ना इमोजी भेजी है, एंड जिसमें वाव कर रही हैं, फ्लाइंग किस दे रही हैं मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने भी फर्स्ट आवर से मेरा साथ दिया उनका मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर आप इनके जरिए पैसे इस वक्त भेजना चाहते हैं इंडिया कहीं भी, तो बहुत काम आसान है। यू कैन गो टू द ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए भेज सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा रहती हैं साथ साथ, और आज आपको आपके ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 रुपीस मिल सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे बिश्वजीत, जिन्होंने बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया, और रफ़ी साहब ने इनके बहुत से गीत गाए और उन गीतों को अमर कर दिया। और मैंने आज के प्रोग्राम के लिए चुना है फिर वही दिल लाया हूँ का एक गाना, बहुत प्यारा गीत है, आप सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, आप सोचते रहिए कौन सा गीत हो सकता है।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. One performer.
3: Countless personalities. A
1: whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK tour 2026.
1: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialise in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
7: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203 773 633. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
10: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
11: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
12: Lycagoon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and Lycagoon.com.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Lyca Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: जी हाँ, Artist of the Week में मैंने जो गीत चुना था वो actually Joy Mukherjee की फिल्म का था, not Biswajit की फिल्म का. तो जो गीत मैंने अब चुना है वो आशा जी ने गाया, लेकिन इन दोनों पर पिक्चराइज हुआ था.

0: गाना पिक्चराइज हुआ था विश्वजीत एंड शर्मिला टैगोर पर, एंड शर्मिला लुक्ड सो ब्यूटीफुल। आई थिंक अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। फिल्म मैंने वैसे देखी नहीं है, लेकिन मुझे आई कैन विजुलाइज कि ये गाना शर्मिला जी पर ही पिक्चराइज हुआ था, एंड शी वॉज सिंगिंग एंड विश्वजीत वॉज विद हर। सो अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ज्योति जी आपने अभी अभी ज्वाइन किया, रानी जी आपने पीस लाव से अभी ज्वाइन किया है, विजय गुजरे, विमल रायन जी, गुल इन टूटिंग, संतोष इन हैरो, हंस वोरा जी, हरप्रीत इन वैंकूवर एंड प्रीति इन बेल्जियम, अमिता जी, रवि जी, उल्लास इन टोरंटो, मनु जी, हना, शौकत हुसैन, भारती जी एंड निरंजना शाह, थैंक यू, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, वत्सला जी, भरत गंगाराम जी, राजकुमार जी, जैस्मिन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमीला मुंगर एंड अरुणा जी, जगतार जी इन वैंकूवर, आप सभी सुन रहे हैं, वजाहत आप अलेक्सा पे सुन रहे हैं, मोहम्मद अयूब चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्या इन हैरो, भारती डीडी और भी बहुत, सपना इन अक्सप्रीत, शेखर जी, विनी विनोद, वरुण जी, भरत गंगाराम जी, महेंद्र मरचार्य जी, तोची जी, मृदु जी, आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं नाम लेती रही तो बस गाने नहीं सुना पाऊंगी। मिसेस शेख आप भी सुन रही हैं, तोची जी आप भी सुन रही हैं, तोशी अमृता जी एंड आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं, अगर बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। हाँ एक बात और मुझे बताइएगा, फिल्म जो एक फिल्म जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई उसका नाम है बात एक रात की, 1962 9th ऑफ अगस्त को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के दो गानों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत मैं छोड़ दूँ और कौन सा आपके लिए प्ले करूँ। एक तो बहुत सुनने में आता है वो गाना, सभी गाते भी हैं, बड़ी इजीली गा लेते हैं, किसी को कहो गाने के लिए तो फटाफट ये गाना आ जाता है दिमाग में। और दूसरा गीत है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, अकेला हूँ मैं हम सफ़र ढूंढता हूँ, और दूसरा गीत है ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे बता दें। एंड मीनवाइल आई एम गोइंग टू प्ले अनदर ब्यूटी फुल सॉन्ग, वो भी शर्मिला टैगोर जी पर ही पिक्चराइज हुआ, फिल्म का नाम तलाश, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, और डेरी वेली वाले ये गाना आप तक पहुंचा रहे
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: फिल्म का नाम था तलाश और ये फिल्म 9 अगस्त 1969 में रिलीज हुई थी। राजिंदर कुमार शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म में काम किया था। ओपी रल्लन साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। एस डी बर्मन साहब का संगीत, मजरू साहब ने लिखे थे ये सारे गीत और ये गीत आप तक पहुँचाया।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Radio.
4: Laika Radio. Laika Radio.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Right, we Southall Travel walon ka ek message. Southall Travel is pleased to announce that the FCTO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. You can call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
1: भाईजी मेरे साथियों ने इस गीत को वोट दिए थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. दो ऐसे थे मेरे साथी जिन्होंने दूसरा गीत कहा था, वो किसी और रोज जरूर आप तक पहुंचा दूंगी.
0: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है
3: Leica Radio.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू. और हर्ज़मैन बटर 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN. Start to

0: Coca noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: नूडल्स कोका नूडल्स वालों ने ये गीत आप तक पहुंचाया. फिल्म का नाम था सौदागर. इस फिल्म के बहुत सारे गाने बहुत लंबे लंबे हैं. इलू इलू आई वांटेड टू प्ले लेकिन 9 मिनट का गाना है. बात एक रात की का गीत आपने सुना जो आज ही के दिन रिलीज हुई. कन्यादान का 9th of August का 1968 में रिलीज हुई एंड 1969 में तलाश. 1974 में आई थी फिल्म कसौटी अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी की और काला पत्थर ऑल्सो 9th of August इन 1979 and Sagar in 1985, Saudagar 1991 में and 96 में आज के दिन फिल्म आई थी खामोशी. अगला गीत कौन सा हो सकता है सोचिए.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you today. क्या है करेंसी का रेट? अरे भाई कहाँ गए आप? इंडियन रुपीस अगर आपको चाहिए तो इंडियन रुपीस आपको मिल सकते हैं इस वक्त 128.44 पाकिस्तानी रुपीस 374 pounds and 49 pence, श्रीलंकन रुपीस 452.37 एंड US डॉलर्स 1.34.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabawal. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: It's £103.57 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
3: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
2: This is the Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
1: Bhai Sarita keh rahi hai bye-bye, jaldi-jaldi mein, aur last gana Kanyadan se hai, jisse jo aapko news tak pahunchayega, mujhe ijazat dijiye, mere baad yahan aa rahe hain Sandy Shah, aur dusri taraf honge Neeraj and मैनचेस्टर में आप सुन पाएंगे जैजी जे को. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले हफ्ते.
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी. स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी.
5: आई होप मिशन है ना हम लोग वक्त पर पहुंचे.
6: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
7: अ स्टोरी ऑफ लव, रिडेम्पशन एंड सेकंड चांसेस रिटर्न्स टू द बिग स्क्रीन.
6: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
7: इमरान हाशमी इज बैक इन द मच अवेटेड सीक्वल अवारापन 2.
6: इस बार या तो यह अवारापन खत्म होगा या मैं.
5: तो फिर
7: विटनेस पावरफुल इमोशंस, ब्रेथटेकिंग एक्शन एंड अ साउंडट्रैक दैट स्टेज विद यू लॉन्ग आफ्टर द क्रेडिट्स रोल. रिलीजिंग इन सिनेमास फ्रॉम ऑगस्ट 14th. फॉर योर नियरेस्ट सिनेमा लिस्टिंग्स विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.

0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Right, let's check in on the latest gold rates for you here. Leica Radio Greater London, Leica Radio Midlands. Gold currently trading at £102.57 per gram. We'll keep you up to date with the latest gold rates on your Leica Radio.
0: Ram Jewelers, specialising in diamond jewellery, platinum jewellery, 22 carat gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
1: So Corn Hair Hamare mystery guest star for a three-course meal. If you know, don't delay. Get in touch with me. I want to hear from you. Around the corner, as we always do, 90s throwback to finish things off.
0: Niraj on the Sunday Showdown. Proudly sponsored by TicketsToIndia.co.uk. For the best rates, book online or call 020-8518-9100. Bringing India closer.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, we will reach the time.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860

0: Baker Radio.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती।
5: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
4: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
5: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
4: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं।
5: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vakrania Media on Instagram.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959 250376.

0: जिंदगी।
1: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
2: भोजपुरी बवाल।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई।
2: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
6: द ग्रेटेस्ट एशियन लव सॉन्ग्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल, at all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.